0: श्रोते हो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, कबीर साहब को उलटबासी का उस्ताद कहा जाता है, यानी ऐसी बात जो सुनने में अजीब और उल्टी लगे, लेकिन जिसका अर्थ गहरा और सीधा हो. आज कबीर साहब एक ऐसे कुएं की बात कर रहे हैं जिसका मुख आकाश की तरफ है और जिसकी पनिहारिन पाताल में रहती हैं. सुनने में यह किसी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन इस पहेली के पीछे छिपा है हमारी चेतना और योग का बहुत बड़ा राज. आइए आज इस पहेली को सुलझाते हैं. जानते हैं इस अमृत के बारे में जिसे हर कोई नहीं पी पाता. श्रोताओं, कबीर साहब इस दोहे में सहस्रार चक्र और कुंडलिनी के उस मिलन की बात कर रहे हैं. यहाँ से आनंद का अमृत झरता है. अका से मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी.

0: बारी। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, अकासे मुख औंधा कुआ। योग शास्त्र में हमारे सिर के ऊपरी हिस्से जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, उसे एक उल्टे कुएं अर्थात औंधा कुआ के रूप में देखा गया है। यहाँ से निरंतर ज्ञान और आनंद का अमृत झरता है और पाताले पनिहारी, यहाँ पनिहारीन हमारी चेतना या कुंडलिनी शक्ति हैं जो मूलाधार यानी शरीर के निचले हिस्से में सोई रहती हैं। जब साधना से यह शक्ति ऊपर की ओर उठती हैं, तब वह उस औंधे कुएं तक पहुँचती हैं। अगली पंक्ति में ताका पानी को हंसा पीवे, उस दिव्य कुएं से निकलने वाले अमृत रूपी जल को केवल हंस यानी वो शुद्ध आत्मा ही पी सकती हैं जिसने अपने विकारों को त्याग दिया है। बिरला आदि विचारी, कबीर स्पष्ट करते हैं कि इस रहस्य को समझने वाला और उस अमृत का स्वाद चखने वाला कोई बिरला यानी कोई विरला साधक ही होता है। अगर कोई इस आंतरिक यात्रा पर नहीं निकल पाता, यह पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए है। कबीर साहब यहाँ हमें यह समझा रहे हैं कि असली सुख और शांति का स्रोत हमारे अपने भीतर हमारे मस्तक के शिखर पर स्थित हैं। हमें बस अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर मोड़ना है। दोस्तों, आज विचार कीजिए कि हमारी ऊर्जा और हमारा ध्यान कहाँ लगा है। क्या वह केवल शरीर की बुनियादी ज़रूरतों तक ही सीमित है, या कभी उस आकाश की ओर भी देखते हैं जो हमारे भीतर मौजूद हैं? आज कोशिश कीजिए अपनी एकाग्रता और अपनी आँखों के बीच या मस्तक के केंद्र पर टिकने की। याद रखिए, जब विचार शांत होते हैं तभी उस अमृत की बूंदें महसूस होती हैं। जो बाहर के कुओं से प्यास बुझाते हैं वे फिर प्यासे हो जाते हैं, लेकिन जो इस औंधे कुएं का पानी पी लेते हैं वे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आपन ट्यून केला है रेडियो मनभावन 90.8 FM, अलवेज हर्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: पीजिए सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं?
1: जज्जा

0: श्रोते हो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284449433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, कबीर साहब को उलटबासी का उस्ताद कहा जाता है, यानी ऐसी बात जो सुनने में अजीब और उल्टी लगे, लेकिन जिसका अर्थ गहरा और सीधा हो. आज कबीर साहब एक ऐसे कुएं की बात कर रहे हैं जिसका मुख आकाश की तरफ है और जिसकी पनिहारिन पाताल में रहती हैं. सुनने में यह किसी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन इस पहेली के पीछे छिपा है हमारी चेतना और योग का बहुत बड़ा राज. आइए आज इस पहेली को सुलझाते हैं. जानते हैं इस अमृत के बारे में जिसे हर कोई नहीं पी पाता. श्रोताओं, कबीर साहब इस दोहे में सहस्रार चक्र और कुंडलिनी के उस मिलन की बात कर रहे हैं. यहाँ से आनंद का अमृत झरता है. अकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी. अका

0: सॉरी। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, अकासे मुख औंधा कुआ। योग शास्त्र में हमारे सिर के ऊपरी हिस्से जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, उसे एक उल्टे कुएं अर्थात औंधा कुआ के रूप में देखा गया है। यहाँ से निरंतर ज्ञान और आनंद का अमृत झरता है और पाताले पनिहारी, यहाँ पनिहारीन हमारी चेतना या कुंडलिनी शक्ति हैं, जो मूलाधार यानी शरीर के निचले हिस्से में सोई रहती हैं। जब साधना से यह शक्ति ऊपर की ओर उठती हैं, तब वह उस औंधे कुएं तक पहुँचती हैं। अगली पंक्ति में ताका पानी को हंसा पीवे, उस दिव्य कुएं से निकलने वाले अमृत रूपी जल को केवल हंस यानी वो शुद्ध आत्मा ही पी सकती हैं, जिसने अपने विकारों को त्याग दिया है। बिरला आदि विचारी, कबीर स्पष्ट करते हैं कि इस रहस्य को समझने वाला और उस अमृत का स्वाद चखने वाला कोई बिरला यानी कोई विरला साधक ही होता है। अगर कोई इस आंतरिक यात्रा पर नहीं निकल पाता, यह पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए है। कबीर साहब यहाँ हमें यह समझा रहे हैं कि असली सुख और शांति का स्रोत हमारे अपने भीतर, हमारे मस्तक के शिखर पर स्थित हैं। हमें बस अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर मोड़ना है। दोस्तों, आज विचार कीजिए कि हमारी ऊर्जा और हमारा ध्यान कहाँ लगा है। क्या वह केवल शरीर की बुनियादी ज़रूरतों तक ही सीमित हैं, या कभी उस आकाश की ओर भी देखते हैं जो हमारे भीतर मौजूद हैं? आज कोशिश कीजिए अपनी एकाग्रता और अपनी आँखों के बीच या मस्तक के केंद्र पर टिकने की। याद रखिए, जब विचार शांत होते हैं तभी उस अमृत की बूंदें महसूस होती हैं। जो बाहर के कुओं से प्यास बुझाते हैं वे फिर प्यासे हो जाते हैं, लेकिन जो इस औंधे कुएं का पानी पी लेते हैं वे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपलं खानदेश, आपली माणसं।

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडलबाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: प्यार का मौसम
0: बेशरम